0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: राम राम दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं। और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं। आप हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर। उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है।
0: जी,
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि, और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है।
0: जी।
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वाज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता, और ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शंस एक कंपनीज में मिली। तो मगर मेरा, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया। और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: में एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो जी, बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं। के चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर। जी जी जी।
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के, वो बेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात।
1: जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं, तो आप गुरु अपनी जो चैतन्य
0: ऊर्जा
1: है, उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर रहे
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है सुगम करते।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, और इसके बारे में विस्तार ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा, लेकिन मैं इशारा कर देता हूं अपने लिसनर्स को कि कहते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क तक लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जो अभी आपने हमें बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। लेकिन सर आज का जो समय है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो खत्म हो गई और घुटना स्पर्श हो गया है। इस बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना सही है कितना गलत है और अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल रहे हैं। सो लिसनर्स यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि एक विद्वान क्योंकि एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी जो कि जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में डायरेक्टर हैं और 38 साल का अनुभव है। इस विषय पर जरूर जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है, लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी,
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यवहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यवहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है, वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी,
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म है उसको

0: हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, मगर जब हम इनकी, इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेति संबंध। सो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
1: प्रकाशमान माइंड,
0: शक्ति से जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं
1: जी।
0: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में
1: जी,
0: ये एम्बेडेड है,
1: विद्यमान है।
0: यही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे
1: जी,
0: तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है, और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है,
1: नहीं।
0: ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे,
1: बहुत
0: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे
1: जी।
0: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
1: वो सबके एक है जी,
0: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके,
1: सब कुछ भूल चुके हैं, सब
0: पता
1: कुछ।
0: कि हमारे वेदों में क्या कुछ नहीं है, हमारे वेद जो है उनमें इतना ज्ञान है, मगर आप किसी से भी पूछिए, न वेद का पता है, न उपनिषद का पता है, इवन भागवतम का किसी को नहीं पता है। भागवतम में क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान की सरिता उसमें बह रही है
1: जी,
0: उससे भी वंचित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लिप सर्विस कर रहे हैं, हम कर्म कांड में, रिचुअल में फंस गए हैं। और भागवतम इज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिज्म, हम उसी को धर्म समझ बैठे हैं,
1: ठीक है।
0: ये हमारी अवस्था, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो है वो अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दी, उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया, ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
1: बहुत खूबसूरत।
0: और संस्कृत हमने छोड़ दी, तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलोसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
1: दार्शनिक।
0: दर्शन का अर्थ है, होता है देखना,
1: देखना
0: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से अंदर जो चैतन्य शक्ति से चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
1: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
0: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति
1: जी जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया और उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो। स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है, वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है, लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, चूंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था, तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती हैं, उनसे, उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर, जैसे भी आपकी संस्कृति है, उसके अनुसार जो अंदर वास करता है उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में, तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। जो इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं पहले स्वराट फिर सम्राट, जो स्वराट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक कायाकल्प आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह।
0: ये जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा आई एम द लिमिटलेस सेल्फ, तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है। शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अग्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदाज है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जम्बो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे फिर आप संसार में कर्म कीजिए
0: जी, जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है, एफर्टलेस एक्शन होना चाहिए।
0: सो लिसनर्स, कहने का एक आशय यही है, अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं और अगर इस तरीके से इंसान अपने जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है, फोनिक हमारी बातें हो रही है, आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर्स।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगानी चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार सर। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है। और हमारे इसमें संस्कार मिल जाएं, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर, मैं इस बात को यूं कहूं कि या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर,
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था। वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है। इस युग हम प्रोदेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हाँ, साधु बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का। क्योंकि बीच में जब क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था। उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। मगर अगर आप वैदिक ऋषि देखो वो सब हाउस होल्डर रहे हैं, वो गृहस्थ थे सारे हमारे। तो और जो संन्यास और वानप्रस्थ वो तो सिर्फ एक दो आश्रम है हमारे जीवन में, बाकी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: तो वेद कभी नहीं कहता कि आप अगर इन सब चीजों का अध्ययन करते हो तो आपको साधु बनना है, क्योंकि वेद जिस बात की जिस ज्ञान की चर्चा करता है वो इंटेग्रल नॉलेज है। वो ये नहीं है, उस पर डिफरेंशिएशन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सेक्युलर ज्ञान है, अर्थली ज्ञान है, ये आपको रोटी कमाएगा। वो दोनों को इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है।
0: जी।
1: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ।
0: मंत्र
1: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल
0: वायु
1: अग्नि वायु और आकाश। ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। ये सिंबल्स हैं। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
0: जी,
1: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस। ये तीन स्टेट्स है मैटर की और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा? आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी, सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है,
0: scientific.
1: हमें समझने की, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
0: जी,
1: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा सीक्रेट्स जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
1: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है, हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी और
0: सारे काम हो जाएंगे,
1: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बहुत बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
0: क्या बात?
1: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: क्या बात?
1: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
0: जी। जी,
1: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो ना मोशन में होता है ना रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
0: जी। जी,
1: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
1: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो।
0: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसनर्स, मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु, विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर, कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें समय दिया, फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। सो लिसनर्स बताएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चार मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन है और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन, आपका बहुत बहुत नमस्कार।
0: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे। जी, जी, जी, जी। लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये जो सफर की शुरुआत रही कैसे रही? अमूमन होता क्या है कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज।
1: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
0: जी,
1: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उन सब चीज़ों में जब मैं देखता था तो मेरा कभी मन करता था कि मैं भी पत्रकार बनूं और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक उपलब्धि हासिल हो। उस समय मुझे लेखन का शौक था, तो मैं गज़ल, कविता, कुछ कहानियां, इस तरीके की उस समय की चीज़ें थी तो मैं लिखा करता था और बड़ी सराही जाती थी। कई बार कई समाचार पत्रों ने उसको
0: प्रकाशित भी किया।
1: एक पत्रकार थी बहुत पहले, उसका नाम था पांचजन्य, और जो अभी भी है।
0: जी है, जी है।
1: पांचजन्य में भी मैंने काफी लिखा, बड़ी अच्छी उसकी कमेंट्स आते थे। उसके बाद कई ऐसी पत्रिकाएं रही, एक सरिता चला करती थी
0: पत्रिका, जी जी जी,
1: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
0: तो कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
1: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहां लोग अपने जीवन यापन के लिए, हम बहुत सारी चीजों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
0: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं।
1: जी,
0: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से, या किसी पाठकगण से, या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है। क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर
1: जी।
0: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
1: बिल्कुल सही बात है गगन, ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
0: वास्तव
1: वो एक पूजा है।
0: बहुत सही कहा।
1: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
0: नारद जी के बारे में,
1: वो नारद जी के बारे में कहा गया।
0: जी जी जी,
1: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और नारद जी को अगर कहे कि उनका मोह भंग हो गया,
0: हाँ।
1: तो जहाँ भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारिता की प्रेरणा देते रहे या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखे, तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
0: क्या बात,
1: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
0: बहुत
1: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
0: अरे वाह, आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी। आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-2055 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर, उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बात निकल कर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
2: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती, स्तंभ स्तंभ है। और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
1: जी जी,
2: मैं अगर
1: जी
2: मैं हूं तो
1: नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझें, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है, तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
2: कोई बात जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
1: जी,
2: वो यही है कि बदल चुकी है,
1: बदल चुकी है,
2: बदला कुछ नहीं है। पहले भी पत्रकारिता ऐसे ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो स्वच्छ अपने और दूसरों के विचार हैं
1: जी,
2: उन विचारों को रेखांकित करके
1: जी
2: या शाब्दिक करके
1: जी,
2: उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
1: जी,
2: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
1: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है, तो दूरदर्शन में तो हमने बहुत सादगी के साथ डिबेट्स देखी हैं, और दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जब हम देखते हैं तो क्या ये टीआरपी का कोई खेल है या क्या होता है ये सर, ये समझना चाह रहा था मैं आपसे क्या होता है
2: ये गगन। एक अपने तरीके का लोगों ने जो हमारे समाचार माध्यम है, समाचार चैनल्स हैं, सबने अपना अपना, देखिए मुझे सादा थाली का भोजन अच्छा लगता है तो मैं सादा थाली का भोजन ही खाऊंगा, लेकिन किसी को उसी थाली में चिकन पसंद करता है तो चिकन खाएगा
1: जी।
2: अन्य इसी तरीके से सबके अलग अलग स्वाद और अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है
1: जी।
2: समाचार चैनल्स में जो समाचार दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स हो, दूरदर्शन में जो कुछ दिखाया जाएगा वो मर्यादित होगा क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी कोई खेती तो होती नहीं
1: जी। जी
2: वही उनकी कमाई है, ये वही उनका साधन है, जो फाइनेंशियल जो भी वहां से ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अपने भी माध्यम है
1: जी। जी
2: लेकिन सच मायने में अगर पत्रकारिता को कहेंगे तो ये पत्रकारिता नहीं कह सकते।
1: क्या बात है, यही सर मैं चीजों को जानना या समझना चाह रहा था। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, या यूं कहूं कि जो एक साधारण व्यक्ति श्रोता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ उन विद्यार्थियों को भी रखना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कुछ करियर की बातें हैं वो मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो लिसनर्स आप कहीं जाएगा मत, वाकई ये जो वार्तालाप हो रहा है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के सीईओ हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व तो उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो, और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का जी,
1: गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें, और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान होगी और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर, कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपने मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और सभी अपने मास्कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी, कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिस को भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दे, सम्मान दे, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
0: बहुत गुण, बहुत गुण।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूँगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक छोटा सा वादा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं। ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर और फेसबुक पेज को

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: खड़ा या लग गया लगता किसदा
1: ओए गैरी वो अपना दोस्त है यार
2: सच्ची
1: चलो नु मिलन चलिए अपन
2: चल चलिए
0: खड़ा शुरू होने वाला भाई
1: आ गया गैरी
0: भाई आ गए ओ गैरी
1: संधू भी आ गया तू कितने रह गए सी ओ यार मसा अंदर आया टिकट चेक करके भेज दे
0: ओ चुप करो बस हुन देखन दो यार

0: महामारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महामारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महामारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें।
3: सुनो शारदा 90.8 FM।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
0: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
1: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
0: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क
1: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM इंकलाबी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, हम स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ गई, जिसमें आज मैं बतौर आज आपके साथ हूं दीपाली, और मेरे साथ हैं सेहतिया सिंह के रूप में मेरे साथी गगन जी। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, बेहद ज़रूरी हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने समुदाय के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, और स्मार्ट और हम मिलकर इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। आप सबका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं और एक कम्युनिटी रेडियो के लिए आप ही सब कुछ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा नमस्कार, और गगन जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार, साथ ही साथ मेरे जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार और बहुत सारा प्यार।
0: साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भावी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे सामान्य टीबी के इलाज की, दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी के इलाज की, बच्चों में टीबी के इलाज की, और सरकारी योजनाओं की जो गरीबों की मदद के लिए बनाई गई हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सेहतिया सिंह जी, जो कि हमारे को स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल का आसान भाषा में उपाय बताते हैं, आसान भाषा में हमें समझाते हैं। तो सेहतिया सिंह जी भैया, आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में।
1: भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहयोगी दीपाली जी, आपका साथ ही साथ श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। चलिए, इस धन्यवाद के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप और हम, या यूं कहें कि हम सब रेडियो सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं। रेडियो ओपीडी के माध्यम से स्मार्ट का प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई हम आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं खास विषय के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल जवाब का दौर भी शुरू होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और हर एक समस्या का समाधान भी हमें मिलता है, या यूं कहें कि इस कार्यक्रम से हमें बहुत सारी चीजें मालूमात होती हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं टीबी के विषय में करेंगे, तो अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं दोस्तों, और यही बदलाव सबसे बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं जीती जाती, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गांवों में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि बिल्कुल जिंदगी खत्म हो गई, कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब होता है मौत, और उनके मन में अनजाना डर बैठ जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है?
1: देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और जवाब उससे भी बहुत खूबसूरत। जवाब है बिल्कुल नहीं होता, और मैं चाहूंगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो, टीबी का इलाज संभव है दोस्तों, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या है बीमारी को छिपाना, समस्या है जांच में देरी करना, समस्या है दवा बीच में छोड़ देना। अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स पूरा करे तो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है दोस्तों।
0: लेकिन भैया, सेहतिया भैया एक बात बताइए, कई लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। मुझे याद आ रहा है एक घटना जो शायद हमारे श्रोताओं के बीच भी एक सीख बन सकती है।
1: बिल्कुल बन सकती है जी हाँ, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे दोस्तों। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे, मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम, शाम शराब, धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता, लोग कहते जांच करा लो, लेकिन वे हंसकर टाल देते, कहते अरे कुछ नहीं है, दो दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। करीब दो महीने बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुंचे तो जांच में टीबी निकली दोस्तों, टीबी। डॉक्टर ने दवाइयां शुरू कराई, कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी, खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा अब तो मैं ठीक हो गया हूं, दवा लेना बंद कर दिया, फिर कभी लेते कभी दवा नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ सके, फॉलोअप जांच के लिए भी नहीं गए,
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रही।
1: बिल्कुल। और कुछ महीनों बाद बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी MDR-TB हो गई है। अब इलाज ज्यादा कठिन था, दवाइयां बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया। और दुर्भाग्य से, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी थी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया था, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बड़ी ही दुखद कहानी है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज बीच में छोड़ देने की वजह से भी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि आपकी बात को ही मैं दोहरा देता हूँ कि कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से ही दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि दो दिन खाई और छोड़ दी, ये एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक दवा लेनी ही होगी, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: तो भैया आप जरा विस्तार से बताइए कि जब किसी व्यक्ति की टीबी की पुष्टि हो जाती है यानी पता चल जाता है कि व्यक्ति को टीबी है, तो इलाज कैसे शुरू होता है, क्या हर मरीज एक जैसी दवा ले सकता है, क्या इलाज महंगा होता है, सरकार इसमें क्या मदद करती है, और मरीज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
1: भाई देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयां दी जाती हैं, बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी है या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। खांसी रहे दो हफ्ते से पार,
0: खांसी रहे दो हफ्ते से पार,
1: जांच कराना है समझदारी,
0: जांच कराना है समझदारी,
1: टीबी हारेगी हम जीतेंगे,
0: टीबी हारेगा हम जीतेंगे,
1: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे,
0: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे। हाँ तो दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जो कि एक गंभीर बीमारी टीबी से जुड़ा हुआ है। हम इसमें जानेंगे कि टीबी का इलाज किस तरीके से संभव है और सरकार इसमें क्या मदद करती है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता है, हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारे राम बाबू की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल यह है कि जब व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार टीबी के विषय में बात कर रहे हैं, बीमारी कैसे फैलती है, उसे कैसे रोका जा सकता है, इलाज किस तरीके से संभव है, भारत सरकार की क्या मदद होती है। तो सेहतिया भैया हमारा आपसे सवाल है कि आप हमें टीबी के इलाज के बारे में खुलकर बताएं।
1: बिल्कुल आरजे साहब, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग सस्पेक्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त उपलब्ध कराती है। दोस्तों जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयाँ एक नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती हैं, जिन्हें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है, बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है, इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा हो और उसे लगे कि वो ठीक हो गया है, तब भी उसे दवा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, यानी दवा का कोर्स करना पूरा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना बहुत जरूरी है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलोअप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांच करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं बल्कि नियमित निगरानी का भी हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों की टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग होता है?
1: हाँ भाई, बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चों में टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते, कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता, कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। बच्चों को इलाज भी मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूंगा कि बच्चा थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद न करें। पूरा कोर्स पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए।
0: हाँ, तो साथियों, एक बात फिर से हमारे सामने आ रही है, वह है इलाज को पूरा करना। कुछ लोग बीच में इलाज छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक होने लगे हैं, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी का, पोषण की कमी के कारण भी ऐसा करता है और अपना इलाज जारी नहीं रख पाता। क्या सरकार इस दिशा में कुछ मदद करती है? सेहतिया भैया, आप इस पर कुछ प्रकाश
1: देखिए। बिल्कुल हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधी सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है, इसका नाम तो काफी सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आखिर निक्षय मित्र होता कौन है?
1: देखिए साहब, निक्षय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीजों की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी कौन होता है?
1: भाई, निक्षय साथी आम तौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग करता है। कई बार एक जिम्मेदार निक्षय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: ये तो बेहद महत्वपूर्ण बात है। आज मैं सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, MDR-TB। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, आखिर ये क्या होती है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। MDR-TB यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सरल भाषा में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती। दोस्तों ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है, नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं कराता है। बात करता हूं राम बाबू की। राम बाबू की कहानी इसी का सटीक उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते हैं तो वे कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, फिर सामान्य इलाज काम नहीं करता।
0: तो ये तो सुनकर डर लगता है, क्या एमडीआर टीबी का इलाज संभव है?
1: बिल्कुल संभव है, और यही संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले एमडीआर टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए बीपीएएलएम नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेटा क्विलीन, प्रिटोमेनिड, लाइनजोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है। लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं, एमडीआर टीबी का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्टों के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
0: तो भैया, क्या कुछ ऐसी दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं जो टीबी के मरीज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं, तो दोनों का इलाज साथ साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को और गंभीर बना सकता है। इसी तरह एचआईवी से प्रभावित लोगों में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है। तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब?
0: शराब की बात तो राम बाबू की कहानी में भी सामने आई थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं। इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सेहतिया भैया, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए?
1: देखिए साहब, सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, यानी कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी के शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधी उपचार भी उपलब्ध कराती है, ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बहुत आसान बातें हैं। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रूमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूकने से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार के बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
0: हाँ, तो सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए साहब, मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा। पहली, टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दूसरी, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुफ्त है। तीसरी, दवा कभी बीच में न छोड़ें। चौथी, फॉलोअप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठी, एमडीआर टीबी भी उपचार योग्य है, इसलिए निराश न हो। सातवीं, परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग कराएं। और आठवीं, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
0: टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, कितना सुंदर संदेश है। तो साथियों, याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, ना ही कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। बीमारी का इलाज जरूरी है, दवाएं समय पर लें और इलाज बीच में ना छोड़ें। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सुनो शादो स्मार्ट मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ गई। हमारा यही उद्देश्य है कि हम समुदाय तक पहुंचें, समुदाय की भाषा में संदेश पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन्हें बताएं। फिलहाल हम लेते हैं शपथ,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त देश तभी बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई, दवा न छोड़ो बीच सफर में, जीत छुपी है पूरे असर में, पोषण सहयोग उपचार सही, टीबी हारेगी जीतेंगे सभी।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपका साथी शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हम आप तक स्वास्थ्य जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप जागरूक रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और बीमार ना हो। तो इस तरह से आप लाभ ही लाभ ले सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ट्यूबर क्लोसिस की, यानी कि टीबी की। क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे ये बीमारी फैलती है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, और अगर किसी को टीबी हो भी जाता है तो इलाज क्या है, क्या व्यक्ति सही हो जाता है, अपने आप को कैसे संभालें, और भी बहुत सी बातें हैं इस बीमारी से जुड़ी हुई। और इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह। तो आइए जानते हैं उनसे इस बीमारी के बारे में।
1: देखिए, एक जमाना था जब ये मानते थे लोग कि टीबी तो एक अनुवांशिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन बाद में हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, तो उन्होंने बाद में बताया कि नहीं भाई, अनुवांशिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो ये तो वेल नोन है कि एक बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब सवाल ये उठता है कि ये होती कैसे है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलती है। तो एक इंसान जिसको टीबी है, हम यहाँ पे देखें, वैसे तो शरीर के किसी भी अंग की टीबी हो सकती है यह, लेकिन यह मुख्यतः रूप से हम फेफड़ों वाली टीबी का जिक्र करेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन वही है। तो जब किसी इंसान को टीबी होती है और वो जब खांसता है, जब वो छींकता है ओपनली, यूजुअली लोग कई बार हाथ भी नहीं रखते, कपड़ा भी नहीं रखते, मुँह भी नहीं घुमाते, तो खांसते छींकते समय बहुत सारे वो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। उसके बैक्टीरिया के चारों तरफ एक छोटी सी कह लीजिए फ्लूड क्लियर होती है, उनको बोलते हैं हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। अब वो जब एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं तो वो धीरे धीरे सेटल होते हैं। सेटल ऐसे होते हैं कि जैसे 2 घंटे में 1 फीट नीचे, तो कई घंटों तक वो एनवायरनमेंट में उस लेवल पर पड़े रहते हैं। अब जिसमें आप या मैं, कोई हेल्दी इंडिविजुअल जब सांस लेता है तो वही ड्रॉपलेट न्यूक्लियर, या आप कह लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लक्ष्य में चले जाते हैं और वहाँ फिर वो अपना काम शुरू करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरे को भी फिर पूरी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं कि भी कैसे अंदाजा लगाएं, कैसे शक करें कि ये टीबी हो सकता। तो एक बड़े कॉमन आपने सुना होगा कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, मतलब ये नहीं है कि खांसी 2 हफ्ते से कम की है तो नहीं सोचें, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो एक बार हाँ सोचना चाहिए कि भी कहीं टीबी तो नहीं है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये टीबी भी एक मेन कारण है। मरीज को बोलते हैं कि थोड़ा लो ग्रेड फीवर, मतलब बहुत तेज बुखार नहीं आता, थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर रहता है, उसको बोलते हैं इवनिंग राइज। पेशेंट ये बोलता है जी शाम को आते आते हैं ना उसकी तबीयत गिरने लगती है और ये जो बुखार है वो शाम के टाइम मेनली होता है। कई बार छूटते हैं, पेशेंट की भूख कम लगने लगती है, पेशेंट का वजन कम होने लगता है, और कभी कभी पेशेंट को खांसी के साथ में ब्लड भी आ सकता है। अब जो एक मेन बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैंने 4-5-6 लक्षणों की बात करी, इनमें से जरूरी नहीं है कि हर एक मरीज को सभी लक्षण हो। कई बार तो पेशेंट

0: राइज, पसीने आने या ब्लड आना, अगर जितने नंबर ऑफ सिम्टम्स या ये नंबर ऑफ लक्षण कह लीजिए जितने ज्यादा हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं टीबी होने के। तो अब यहाँ अगर बचाव की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो बीमारी से ग्रसित एक जो इंडिविजुअल है उसके खांसने या छींकने से कई बार चिल्लाने से वो एनवायरनमेंट में छूटते हैं और दूसरे जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनको चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पेशेंट की जो बीमार है कि वो खांसते समय मुंह पे रुमाल रखे, कोई कपड़ा रखे। हम ये बोलते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो पेशेंट कम से ऐसे रख सकता है। रीज़न ये है कि जब वो एक खांसी करता है जोर से या छींकता है तो 2-3 फीट तक या 3-4 फीट तक भी वो सामने बैक्टीरिया चले जाते हैं। ऐसे करने से वो एटलीस्ट वो यही कंटेन रह जाएंगे। कुछ नहीं तो हाथ रख लें, दूसरी तरफ मुंह कर लें जिधर कोई ना बैठा हो, और उसके ऊपर हाथ रखे ऐसे रखे। आइडियली तो मतलब जिसको कफ एडिकेट्स बोलते हैं, खांसते समय वैसे ही पेशेंट को मुंह को कवर करना चाहिए और दूसरी तरफ मुंह करना चाहिए। तो ऐसे वो हो सकता है कि ऐसा ना करके वो सैकड़ों लोगों को फैलाए, तो अगर वो ऐसा करता है तो दूसरे लोगों की वो एक तरह से रक्षा उसके हित के लिए कुछ काम कर सकता है जो कफ एडिकेट को अपना के। और फिर अगर टीबी हो गई है तो आप भी जानते हो कि प्रोग्राम जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें जितने भी डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट हैं मोस्ट ऑफ फ्री होते हैं, दवाइयां भी फ्री दें। आजकल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत है। आप नियर बाई किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, डॉट सेंटर में जाएं, तुरंत जाँच कराएं या एक्सरे कराएं, बलगम की जाँच कराएं, और अगर टीबी होती है तो बिना देर किए जो टीबी की दवाइयाँ हैं जो सभी जगह लगभग मुफ्त उपलब्ध हैं आप उनको लें ताकि ज्यादा नुकसान होने से पहले उसकी रिकवरी की जा सके।
1: डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी टीबी के बारे में, और हमारे जो सुनने वाले हैं जरूर वो जागरूक रहेंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे और देश को टीबी मुक्त बनाने में मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
4: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
3: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
4: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिस

0: के होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.
5: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
6: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
5: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
6: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
5: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
6: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
5: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
6: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
7: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में, कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें,

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी ही आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें। सुनो शारदा
3: 90.8 FM। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
1: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, अक्सर हम बीमार हो जाते हैं और कोई भी बीमारी हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और अक्सर हम जो बीमार होते हैं वो होते हैं स्वच्छता का ख्याल ना रखना या अपने शरीर का ध्यान ना रखना या ऐसी चीजें खा लेना जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है या फिर प्रदूषित चीजों का उपयोग करना। तो ऐसे में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने घर आंगन में, अपने आसपास और जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर, चाहे हम सफर में हों, घर में हों या कहीं पर भी हों, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे आसपास स्वच्छता होती है, हम अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं तो बीमारियों से बचते हैं। और किसान मित्रों, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आसपास लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपदेश दिया करते थे। उनका मानना था कि एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। और महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और इसको सफल बनाने के लिए भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। तो आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी रहते हैं वहां स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई ही करना नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। और किसान मित्रों, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान मित्रों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, खुद भी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वच्छता की बात बताएं और पेड़ जरूर लगाएं और जो भी कचरा है उसको इधर उधर ना फेंके, उसका प्रबंधन आप सही तरह से करें ताकि हमारा जो गली है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, सब स्वच्छ रहें और जिससे कि आपका स्वास्थ्य है वो बेहतर हो और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुंदर बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही स्वच्छ भारत अभियान की और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रागनी, कलाकार थे ज्ञानेंद्र सरधाना। किसान मित्रों, हमारे शरीर में जो एक ताकत है वो हमेशा नहीं रहती, यानी कि धीरे धीरे जो काम करने की क्षमता है हमारे शरीर में, जो अंग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय आप काम नहीं कर सकते, और जब आप काम नहीं कर सकते तो जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं उनके लिए पैसे भी नहीं कमा सकते। तो वृद्धावस्था है वो हमारी अच्छे से कटे, इसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इस योजना में पात्र कौन हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिनकी जो उम्र है 18 से 40 वर्ष की है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। और किसान मित्रों, अगर हम बात करें इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक लाभ की, तो ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को समान पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अब बात आती है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो आप बैंक में जाकर के, जहां पर भी आपका बचत खाता है वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल पेंशन योजना के बारे में। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप अच्छी से खेती कर पाएं और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम से कम कर पाएं, उसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। किसान मित्रों, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही पीएम प्रणाम योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

तो किसान मित्रों, सुनील चौहान द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

प्रेमी सजनों बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जब की जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेहरबानों आज सत्यवान डोरी और कुल्हाड़े की लाला से खुशामद करता है। लाला जी हम पर बुरा वक्त है और हमें डोरी और कुल्हाड़ा गुजर वसर के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों कहने लगा कि चाहे मेरे ये फटे पुराने कपड़े आप गिरमी धर लो, लेकिन मुझे ऐसी मुसीबत में डोरी और कुल्हाड़ा दे करके सहारा दे दो। दोस्तों डोरी और कुल्हाड़ा सत्यवान को मिल गए और सत्यवान लकड़ी काटना शुरू कर देता है बियाबान जंगल में और अपने माँ बाप की खातर उन लकड़ियों को बेचकर दो रोटी का सहारा देता है। मेहरबानों उधर मगध देश के अंदर राजा अश्वपति की इकलौती सुता सावित्री शादी के योग हो जाती है और दोस्तों चिंता हो गई अश्वपति को। नाई ब्राह्मण जगह जगह घूमे लेकिन जोड़ी का वर नहीं मिल पाया और दोस्तों बाद में अश्वपति किस तरह से कहने लगे बेटी सावित्री।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक

रेडियो स्टेशन सुनूं शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर न...

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
3: नमस्कार, आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो, कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। हिंसा को नो की अगली कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए आधारभूत सेवाएं। क्या क्या आधारभूत सेवाएं मिली हुई हैं महिलाओं को भारत में, उन सेवाओं तक महिलाएं कैसे जा सकती हैं, या जो भी आधारभूत सेवाएं हैं उसे महिलाएं कैसे प्राप्त कर सकती हैं, और इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं संगीता त्रिपाठी जी। आइए सुनते हैं।
4: नमस्कार, मैं संगीता प्रकाश त्रिपाठी, प्रिंसिपल काउंसलर, फैमिली कोर्ट, गोरखपुर। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी कार्यक्रमों की जो महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं। देखिए, ये शास्त्र सत्य है कि किसी भी देश के सार्वभौमिक विकास में आधी आबादी यानी हम महिलाओं की भूमिका उतनी ही आवश्यक हो जाती है जितनी कि हमारे शरीर के लिए जल, वायु या भोजन की, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की स्थिति स्त्रियों की दशा को देखकर भी लगाया जा सकता है। तो समाज के हित में ये अति आवश्यक है कि महिलाओं को समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और इसी के मद्देनजर बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके, उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में आज हम आप चर्चा करेंगे। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया और ये केंद्र सरकार की योजना है। और मैं बता दूं कि ये बचत योजना है। इस योजना में माँ बाप पर बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए जो एक आर्थिक बोझ रहता है उसको कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया और मात्र 250 रुपए की न्यूनतम राशि से खाता खोलने का प्रावधान है। यही नहीं, जमा किए गए राशि पर ब्याज भी मिलता है और जब लड़की बालिग हो जाती है यानी 18 साल की तो उसकी शिक्षा के लिए आधे पैसे यानी 50% निकाला जा सकता है और जब वो शादी योग्य हो जाती है यानी 21 वर्ष की तब जाकर के पूरा पैसा निकाला जा सकता है। और ये जन्म से लेके 10 वर्ष तक की आयु के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर के हमारी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसी तरह बालिका समृद्धि योजना है, पुत्री के जन्म के समय प्रोत्साहन के रूप में माँ बाप को 500 रुपए दिए जाते हैं और जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु तक छात्रवृत्ति का भी प्राविधान है। ये योजना सरकारी अस्पतालों या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के महिलाएं जो भी फॉर्म मिलता है इससे संबंधित तो उसको भर करके इस योजना का लाभ उठा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू किया, इसमें बेटी के जन्म होने पर 5000 रुपए सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 5100 रुपए प्रोत्साहन के रूप में माँ को दिया जाता है। जब की बच्ची छठवीं में जाती है तो माँ बाप को 3000 रुपए, आठवीं में 5000, दसवीं क्लास में 7000 और जब बारहवीं क्लास में जाती है बच्ची तो 8000 तक के धनराशि का प्राविधान किया गया है। ये प्राविधान हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है ताकि बच्चियां जन्म भी ले सके और अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी बना सके। इसी तरह सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, ये 10 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई और प्रसव के दौरान माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए इस योजना में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को बिना किसी शुल्क के सरकारी सुविधा मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सभी टीवी चैनलों पे एफएम पे इस स्लोगन को सुनते हैं तो दिमाग में आता है क्या है योजनाएं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। ये 22 जनवरी 2015 को इस योजना को भी लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो गर्ल सेक्स रेशियो है उसमें आ रही गिरावट को दूर करने के लिए पुलिस कानूनी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ बच्चियां और महिलाएं उठा सकें इसलिए व्यवस्था की गई। इसका लाभ उठाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी मुहैया कराया गया है सरकार द्वारा 181। इस टोल फ्री नंबर पे जो पीड़ित बच्ची है या पीड़ित महिला है वो फोन करके अपनी समस्या को बता सकती है और उसे तुरंत निदान भी मिलेगा। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना, आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को और उनको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए यानी घरों में आज भी ग्रामीण परिवेश में आप जाइए तो कहीं ना कहीं चूल्हे पे रोटियां सेकती महिलाएं मिल जाएंगी और वो धुएं से उनके आंख के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है धुआं। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई कि महिलाएं इस स्थिति से उबर सकें, इसमें आर्थिक रूप से जो बीपीएल कार्डधारी हैं महिलाएं, उनके लिए मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत 1 मई 2016 से गैस का चूल्हा और सिलेंडर वितरण किए जाने की सुविधा प्राप्त कराई गई। फ्री सिलाई मशीन योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है और हर राज्य में 50,000 के लगभग 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को व्यवसाय सशक्तिकरण हेतु फ्री सिलाई मशीन दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों। और जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी तो जाहिर सी बात है सामाजिक विकास में भी अपनी भूमिका अदा कर पाएंगी। इन्हीं योजनाओं में एक समर्थ योजना है। हम गांव में देखते हैं अक्सर महिलाएं गांव या शहरी परिवेश में ही, उनको सिलाई कढ़ाई में बहुत रुचि होती है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों का निर्माण भी करती हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो व्यावसायिक रूप से समर्थ हो पाए, इसके लिए सरकार द्वारा ये समर्थ योजना चलाई गई है। तो उसमें सिखाया भी जाता है और वस्त्र उद्योग में महिला कैसे भागीदारी अपनी निभा सकती है इसके बारे में भी बताया जाता है। तो पूर्ण रूप से एक तरह से कहिए कि वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में और व्यवसायीकरण में महिलाओं की भूमिका के क्षेत्र में समर्थ योजना को लॉन्च किया गया। एक महत्वपूर्ण योजना किशोरी शक्ति योजना, जो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए उनके पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी विषयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित भी कराता है और उन्हें सुविधा भी देता है। गांव परिवेश में या कुछ शहरों में भी ऐसी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है जहां पे हमारी बच्चियों को स्वच्छता का ज्ञान हो ही नहीं सकता, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये बीमारियों का अंत ये होता है कि या तो बालिका की मृत्यु हो जाती है या वो बहुत से शारीरिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती है। तो बच्चियां स्वच्छ रहें, स्वच्छता के बारे में जानें, पर्सनल हाइजीन के बारे में, इसके लिए ये योजना संचालित की जाती है। और साथ ही साथ घरेलू और व्यवसायिक कौशलों में किस तरह से सुधार किया जा सकता, जैसे बच्ची कुछ सिलाई कढ़ाई तो जान गई है लेकिन वो आगे कैसे बढ़े, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत उनको और प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अपना एक व्यवसायिक केंद्र खोल सके। ये गांव में और शहरों में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें गरीबी रेखा के नीचे की जो बच्चियां होती हैं, खासतौर पे स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाली बालिकाओं का भी चयन किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा को किन्हीं कारणों से, पहले तो ये प्रयास होता है कि ये शिक्षित हो जाए, अगर किन्हीं कारणवश उनकी शिक्षा में ब्रेक आ रहा है तो आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करने की दिशा में ये इसका ये उद्देश्य है कि आत्मविश्वास, उत्साह और आत्मगौरव की भावना पैदा किया जाए बच्चों। सरकारी योजनाओं के साथ साथ सरकार अपने साथ कुछ एनजीओ को भी जोड़ करके कई योजनाएं संचालित करती है। और जैसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा एनजीओ के माध्यम से कौन सी योजनाओं का संचालन होता है, उसमें है साउथ स्टे होम या अल्पावास गृह, ये उन महिलाओं के पुनर्निवास और संरक्षण को प्रदान करता है जो पारिवारिक कलह के कारण आर्थिक और सामाजिक या शोषण की शिकार होती है। इसमें उन महिलाओं को रखा जाता है कुछ दिनों के लिए जिनको उनके घर वाले या तो निकाल देते हैं या वो घर से बेघर किसी आपातकालीन स्थिति में हो जाती है। इसमें 35 वर्ष से ऊपर तक की महिलाओं को रखा जाता है। इसी तरह राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, प्राय देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं जो मजदूरी कर रही हैं, वो ईटे कार्य मिट्टी का काम कर रही हैं, ऐसी स्थिति में उनके सिर्फ बच्चे कहाँ जाए, तो बच्चों की देखभाल करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु गृह खोला गया। इसमें 6 वर्ष तक के 25 बच्चों 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने, पूरे उनके पोषण की और टीकाकरण की व्यवस्था किया है। इस प्रकार सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया है, थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार द्वारा समुदाय आधारित गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, ये 6 माह के बच्चों के लिए, गोधराई दिवस ये गर्भवती महिलाओं के लिए, ममता दिवस, लाडली दिवस, सुपोषण दिवस, किशोरी दिवस। इन सब दिवसों को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं और बच्चियों को प्रोत्साहित किया जाए, भ्रूण हत्या से बचाया जाए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसे दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, और साथ साथ जो महिलाएं दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लड़ रही हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता 2500 रुपए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार उनके लिए आर्थिक सहायता 2500 रुपए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पुनर्विवाह संपत्ति प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, जिसमें 11,000 की धनराशि दी जाती है। तो कुल मिला के सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिन योजनाओं पे हमने आज वार्ता की, और आवश्यकता है महिलाओं को जागरूक होकर के उन योजनाओं का लाभ उठाने की। धन्यवाद।
3: संगीता त्रिपाठी ने महिलाओं के लिए आधारभूत सेवाओं के बारे में हमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा है कि जिन भी महिलाओं ने ये कार्यक्रम सुना होगा, वो अपने लिए क्या कुछ आधारभूत सेवाएं उपलब्ध हैं, उसको भली भांति समझ गई होंगी और इन आधारभूत सेवाओं का लाभ उठाएंगी। और हाँ, अपने ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को कहेंगी नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। लेकिन कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आरके शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम एक बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, फेरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपको जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान।

0: आरक्षण, 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
1: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
2: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी ही आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगरानी

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: भाग 2, मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करना। पृष्ठ संख्या 55। मशीनें हमारे जीवन को सरल बनाती हैं और हम उपकरणों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करने वाली परियोजनाएं आपको विभिन्न मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करने, विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर नई वस्तुएं बनाने एवं सुधार और रखरखाव करने में सहायता करेंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने, लकड़ी और बांस को आकार देने, मिट्टी के बर्तन बनाने चाक एवं बिना चाक के उपयोग से, कपड़े सिलने, कपड़े सजाने, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करके खेल और एनिमेशन बनाने एवं अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके खिलौने बनाने से संबंधित परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप अपने स्कूल बैंड के लिए वाद्य यंत्र भी बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने साथियों के सहयोग से क्या नया एवं रोचक कर सकते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना को चुन सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी रोचकता की परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 57। निर्माता कौशल, मेकर स्किल्स। ये परियोजना आपको सरल मशीनों के विषय में जानने में सहायता करेगी। ये मशीनें कार्य को सुगम बनाती हैं। आप सरल मशीनों का उपयोग कर अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने का कौशल विकसित करेंगे और साइकिल में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों के विषय में जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि साइकिल को सुदृढ़ एवं क्रियात्मक स्थिति में रखने के लिए इन मशीनों का रखरखाव और सुधार कार्य कैसे किया जाता है। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। सरल मशीनों के विषय में जानने में, सरल मशीनों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने में, निर्माता कौशल के लेआउट और रखरखाव की योजना बनाने में, साइकिल में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनों के बारे में सीखने में। चित्र 3.1, उपकरणों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ उपयोगी बनाना। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इसमें कुछ छात्र छात्राएं उपकरणों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ उपयोगी बना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 58। हमारे आसपास साइकिल, खिलौने, बस, रिक्शा और ऑटो रिक्शा जैसी कई जटिल मशीनें हैं। हम हैंडल और अपने बल के माध्यम से बड़ी सरलता से दरवाजे एवं खिड़कियां खोलते और बंद करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये वस्तुएं कैसे काम करती हैं? इन सभी वस्तुओं में सरल मशीनें होती हैं। उदाहरण के लिए पहिया, धुरी और घिरनियां सरल मशीनें हैं। सरल मशीनें हमारे कार्य को सुगम बनाने में सहायता करती हैं। वे हमें हमारी क्षमता से परे काम करने में सहायता करती हैं जो कठिन या संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या हम अपने हाथों से अत्यधिक भारी बोझ उठा सकते हैं या लकड़ी तोड़ सकते हैं? पहियों और धुरी वाली गाड़ी अत्यधिक भारी वस्तुओं को कम बल के उपयोग से सरलता से उठा सकते हैं। इसी तरह घिरनी अत्यधिक भारी वस्तुओं को उठा सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े आकार की बस भी वास्तव में आपस में जुड़ी हुई छोटी मशीनों से बनी होती है? इसके साथ ही बस में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें साइकिलों और खिलौनों तथा दरवाजों और खिड़कियों में भी उपयोग की जाती हैं। हाँ, ये सत्य है कि ये सरल मशीनों से बने हैं। नीचे दिए गए चित्र 3.2 को देखिए और चर्चा कीजिए कि सरल मशीनें और क्या कर सकती हैं। झुका हुआ आनत समतल, इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ झुके हुए आनत समतल का एक चित्र है। पच्चर, वेज। यहाँ पच्चर का एक चित्र है। उत्तोलक, लीवर। यहाँ उत्तोलक का एक चित्र है। पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। यहाँ पहिया और धुरी का एक चित्र है। पेंच, स्क्रू। यहाँ पेंच का एक चित्र है। घिरनी, पुली। यहाँ घिरनी का एक चित्र है। चित्र 3.2, हमारे आसपास उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें। इस परियोजना में हम सबसे पहले सीखेंगे कि खिलौने बनाने के लिए सरल मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। इससे हमें ये समझने में सहायता मिलेगी कि ये मशीनें कैसे कार्य करती हैं। इसके पश्चात हम साइकिल में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनों की पहचान करना एवं उन्हें क्रियात्मक स्थिति में बनाए रखना भी सीखेंगे। पृष्ठ संख्या 59। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें सरल मशीनों के उपयोग के उदाहरण हैं। चित्र 3.3। सरल मशीनें हमारे परिवेश में सदियों से उपयोग में आ रही हैं। प्राचीन काल के लोग भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आनत समतल इंक्लाइंड प्लेन चित्र 3.3 का और घिरनी चित्र 3.3 ख का उपयोग किया करते थे। प्राचीन वास्तुकला। प्राचीन काल में भारत में बड़े पत्थरों से निर्मित मंदिरों का निर्माण कुशल श्रम, सरल उपकरणों और मशीनों एवं ज्ञानपूर्ण अभियांत्रिकी तकनीकों के संयोजन का उपयोग कर किया जाता था। इस प्रक्रिया में आमतौर पर बड़े पत्थरों को खदान से निकालना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तराशना, आकार देना एवं इच्छित संरचना में एकत्रित करना सम्मिलित था। श्रमिक पत्थरों को तराशने के लिए छेनी और हथौड़े जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया करते थे। उन्होंने भारी पत्थरों को उठाने और रखने के लिए विभिन्न नवाचारी तकनीकों का भी प्रयोग किया, जैसे आनत समतल, उत्तोलक, लीवर एवं घिरनी। आज भी इन सभी सरल मशीनों का उपयोग किया जाता है। चित्र 3.3। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। 1. सरल मशीनों का उपयोग करके विभिन्न सामग्रियों से खिलौने बनाए जा सकते हैं, जैसे गुलेल, रोबोटिक आर्म, रबड़ बैंड नाव, बैलून कार, रबड़ बैंड कार और पवन चक्की बनाने में। पृष्ठ संख्या 60। 2. विभिन्न सरल मशीनों की पहचान करने में जो साइकिल जैसी जटिल मशीन बनाती हैं। 3. साइकिल के मुख्य भागों और उनके कार्यों को पहचानने में। और 4. साइकिल में आम समस्याओं को पहचानने में, जैसे पंक्चर टायर, असंतुलित ब्रेक, आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत करना। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सरल मशीनों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने के लिए। बिंदु 1. आवश्यक सामग्री: कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पाइप, खाली प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक चम्मच, पीने के पाइप स्ट्रॉ, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन, कागज, आइसक्रीम स्टिक, धागा, रबड़ बैंड, गोंद, टेप, ग्लू, गन सिलोफन टेप, कपड़े के क्लिप, ऑल पिन, गुब्बारा, रंगीन डिब्बा, चॉपस्टिक। ये लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के हो सकते हैं। बिंदु 2. आवश्यक उपकरण: कैंची, मीटर स्केल और कटर। साइकिल में प्रयोग की गई छोटी मशीनों के बारे में जानें। आपको कम से कम 5 से 6 साइकिलों की आवश्यकता होगी। आवश्यक सामग्री: तेल या ग्रीस और स्पैनर सेट। उपकरण: रेंच, चेन ब्रश, टायर लीवर और एयर पंप। आपको किसी साइकिल की दुकान पर भी जाना पड़ सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध करना होगा जो आपके विद्यालय आकर साइकिल की मरम्मत करना आपको सिखा सके। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? बिंदु 1. काटने के औजारों और अन्य तेज धार वाले

उपकरणों का प्रयोग सावधानी से कीजिए। बिंदु दो, ये सुनिश्चित कीजिए कि आप गतिविधि समाप्त करने के बाद गतिविधि क्षेत्र को साफ कर रहे हैं और अपने शिक्षक के निर्देशों के अनुसार सामग्रियों और उपकरणों का भंडारण कर रहे हैं। बिंदु तीन, खिलौनों का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित कीजिए कि आप स्वयं को या दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। पृष्ठ संख्या 61। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? क्या आप अपने आसपास किसी सरल मशीन की पहचान कर सकते हैं? अपने आसपास देखिए कि आपको क्या मिल सकता है। गतिविधि एक, हमारे आसपास की सरल मशीनें। अपने आसपास की हर उस वस्तु की पहचान कीजिए जो आपको कुछ करने में सहायता प्रदान करती है। ये पता कीजिए कि ये स्वयं एक सरल मशीन है या सरल मशीनों से बनी है। इस विषय में आप अपने शिक्षक या मित्रों और परिवार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवलोकन को तालिका 3.1 में अंकित कीजिए। तालिका 3.1, हमारे आसपास उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें। क्रम संख्या, सरल मशीन का नाम, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? एक, चाकू। इसका सब्जियों और फलों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। दो, सब्जी छीलने वाला यंत्र, छीलनी। इसका उपयोग फलों और सब्जियों के छिलके निकालने के लिए किया जाता है। तीन, खाली स्थान। चार, खाली स्थान। पांच, खाली स्थान। छह, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 62। मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप सरल मशीनों का उपयोग कर खिलौने बनाएंगे और फिर साइकिल में सरल मशीनों की पहचान करेंगे। आगे आप सीखेंगे कि साइकिल का रख रखाव कैसे किया जाता है। इंटरनेट पर सीखना। आप इंटरनेट पर DIY+XX खिलौने का नाम शब्द खोज सकते हैं। DIY का अर्थ है इसे स्वयं कीजिए। गतिविधि पुस्तिका में दिए गए खिलौने बनाने के चरणों को देखने के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो खिलौने के नाम के साथ वीडियो शब्द भी जोड़ दें। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सावधान रहिए कि कुछ भी अनावश्यक अपलोड या डाउनलोड न करें और व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न करें। गतिविधि दो, उत्तोलक के उपयोग से खिलौने बनाना। उत्तोलक लीवर एक निश्चित बार, फिक्स्ड बार या हैंडल होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है, जिसे हिंज या फुलक्रम कहा जाता है। लीवर के उपयोग करने का एक सरल उदाहरण टिन का ढक्कन खोलने के लिए चम्मच का उपयोग करना हो सकता है। इसमें चम्मच की नोक को ढक्कन के नीचे लगाया जाता है और आप दूसरे सिरे पर बल लगाते हैं। दूसरा उदाहरण खेल के मैदान में लगे झूले हैं। ऐसे खिलौने जिन्हें आप उत्तोलक लीवर का उपयोग करके बना सकते हैं वे हैं गुलेल, कैटापुल्ट, आलसी चिमटा, लेजी टोंग्स और रोबोटिक आर्म कैंची। आप जो सरल गुलेल बनाएंगे उसमें एक ही लीवर होगा, जबकि आलसी चिमटा, लेजी टोंग्स और रोबोटिक आर्म में कई लीवर होंगे। चित्र 3.4 और 3.5 अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके क्रमशः गुलेल और रोबोटिक आर्म बनाने के क्रमबद्ध चरणों को समझाते हैं। पृष्ठ संख्या 63। गुलेल का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री, आपको आइसक्रीम स्टिक, रबड़ बैंड और एक आइसक्रीम चम्मच की आवश्यकता होगी। चरण एक, लगभग 5-6 आइसक्रीम स्टिक को
एक के ऊपर एक रखिए और प्रत्येक सिरे पर एक रबड़ बैंड लगाकर उन्हें एक साथ चिपकाइए। दो अन्य आइसक्रीम स्टिक लीजिए और उन्हें एक सिरे पर रबड़ बैंड से एक साथ जोड़िए। चरण दो, चित्र में समझाए अनुसार दो आइसक्रीम स्टिक को जोड़िए। चरण तीन, रबड़ बैंड का उपयोग कर आइसक्रीम स्टिक को चित्र में समझाए अनुसार चिपकाइए। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें गुलेल का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 64। रोबोटिक आर्म का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री, आपको आइसक्रीम स्टिक, गोंद, पुरानी बोतल के ढक्कन, टूथपिक्स और एक कटर की आवश्यकता होगी। चरण एक, आइसक्रीम की स्टिक को बीच में से छेद कर एक के बाद एक जोड़ें। एक टूथपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और इस टुकड़े को छेदों के आर पार करते हुए आइसक्रीम स्टिक को जोड़ दीजिए। जहां आपने स्टिक जोड़ी है वहां गोंद से चिपकाना न भूलिए। चरण दो, चरण एक की तरह कई और आइसक्रीम स्टिक को जोड़िए। आइसक्रीम स्टिक का मुक्त संचलन होना चाहिए। चरण तीन, कटर से बोतल ढक्कनों के बीच के भाग को काटिए ताकि आप दो गोलाकार आकृतियों को आकार दे सकें। चरण चार, बोतल के ढक्कनों को आइसक्रीम स्टिक के दोनों सिरों पर चिपका दीजिए। आपका रोबोटिक आर्म तैयार है। चित्र 3.5। आइसक्रीम स्टिक, बोतल के ढक्कन और टूथ पिक्स का उपयोग करके रोबोटिक आर्म बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें रोबोटिक आर्म का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 65। एक खिलौने का एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें खिलौने के विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे दिए गए स्थान पर खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। यहां खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। दो, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि तीन, खिलौनों के निर्माण में नोदक प्रोपेलर का उपयोग करना। नोदक प्रोपेलर पंखे वाला एक पहिया है। जैसे कि पहिया चलता है, पंखे पानी या हवा के माध्यम से गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। आप नोदक का उपयोग करके एक रबड़ बैंड की नाव बना सकते हैं। चित्र 3.6, अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके रबड़ बैंड नाव बनाने के चरणों को क्रमबद्ध समझाता है। पृष्ठ संख्या 66। नोदक प्रोपेलर नाव का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री, आपको आइसक्रीम स्टिक, गोंद, स्ट्रॉ, बोतल के ढक्कन और रबड़ बैंड की आवश्यकता होगी। चरण एक, आइसक्रीम स्टिक को चित्र में समझाए अनुसार चिन्हित आकार में चिपकाइए। चरण दो, नाव का आकार बनाने के लिए अतिरिक्त आइसक्रीम स्टिक चिपकाइए। चित्र में समझाए अनुसार बिंदुओं पर छिद्र कीजिए। चरण तीन, नोदक प्रोपेलर बनाने के लिए बोतल के ढक्कनों में उचित स्थान बनाइए। आइसक्रीम स्टिक को काटकर किनारों पर चिपका दीजिए। चरण चार, जैसा कि चित्र में समझाया गया है, नाव के ढक्कनों और किनारे के छेदों के माध्यम से एक स्ट्रॉ डालिए। चरण पांच, नाव की नोक पर और स्ट्रॉ के बीच में एक रबड़ बैंड चिपकाइए। चरण छह, रबड़ बैंड का उपयोग करके स्ट्रॉ एवं बोट की नोक को एक साथ लपेटिए और इसे पानी में उतारिए। आपकी नाव तैयार है। चित्र 3.6, नोदक प्रोपेलर नाव बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें नोदक प्रोपेलर नाव का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 67। एक खिलौने का एक रेखा चित्र बनाइए
जिसमें खिलौने के विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे दिए गए स्थान पर खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। दो, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि चार, खिलौने बनाने के लिए पहिए और धुरी का उपयोग। पहिया और धुरी सरल मशीन हैं जो कि पहियों और छड़ के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे वे एक साथ आगे बढ़ सकें। इस तरह आपके पास दो पहिए हैं और दो धुरी हैं तो आप उन्हें संतुलित तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं जिससे कि वो भार उठा सकें। कार के पहिए पहिया और धुरी का एक उदाहरण है। रबड़ बैंड कार और एयर बैलून कार ऐसे खिलौने हैं जिन्हें आप पहिए और धुरी की दो श्रेणियों का उपयोग करके बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 68। रबड़ बैंड कार। सामग्री, आपको कपड़े के क्लिप, पाइप स्ट्रॉ, चॉपस्टिक या टूथपिक्स, बोतल के ढक्कन, सेलोफेन टेप, कैंची, रबड़ बैंड और गोंद की आवश्यकता होगी। चरण एक, सबसे पहले कपड़े के क्लिप की लंबाई अनुरूप पाइप स्ट्रॉ को काटिए ताकि आप दो क्लिप से थोड़ा दूर जोड़ सकें। चरण दो, चार बोतल के ढक्कनों के ठीक बीच में छेद कीजिए और उन्हें कपड़े के क्लिप्स के लिए पहियों के रूप में इस्तेमाल है तो एक टूथपिक या लकड़ी की स्ट्रॉ से जोड़िए। इसे प्रत्येक छोर पर स्ट्रॉ के माध्यम से डालिए, एक ढक्कन से जोड़िए और फिर दूसरा ढक्कन जोड़िए। ढक्कन और टूथपिक या लकड़ी की स्ट्रॉ को चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग करना न भूलें। चरण तीन, एक टूथपिक या चॉपस्टिक का छोटा सा टुकड़ा पहियों की श्रेणी के बीच में जोड़िए। आपको इसे स्ट्रॉ पर गोंद लगाकर चिपकाना होगा। ये कार के सामने वाले हिस्से जैसा प्रतीत होगा। दूसरी ओर स्ट्रॉ पर एक रबड़ बैंड लपेटिए। ये कार के पिछले हिस्से जैसा प्रतीत होगा। चरण चार, रबड़ बैंड के दूसरे छोर को कार के पीछे पहियों के बीच स्थित छोटे टुकड़े पर लपेटिए। चरण पांच, कार के पीछे लगे रबड़ बैंड को कसकर लपेटिए और इसे स्थिर सतह पर छोड़ दीजिए। आपकी कार दौड़ के लिए तैयार है। चित्र 3.7, रबड़ बैंड कार बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें रबड़ बैंड कार बनाने के चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 69। एयर बैलून कार, हवा गुब्बारा कार। सामग्री, आपको लचीली स्ट्रॉ, एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल, पुरानी बोतल के ढक्कन, सिलोफेन टेप, एक रबड़ बैंड, चॉपस्टिक, बैलून और गोंद की आवश्यकता होगी। चरण एक, चित्र में समझाए अनुसार चॉपस्टिक को बोतल पर चिपकाइए। चरण दो, बोतल के ढक्कनों में छिद्र कीजिए और उन्हें चित्र में समझाए अनुसार चॉपस्टिक से जोड़ दीजिए। चॉपस्टिक के जोड़ को सुनिश्चित करने के लिए गोंद का उपयोग करना न भूलें। चरण तीन, बैलून को रबड़ बैंड की सहायता से स्ट्रॉ के एक सिरे पर लगाइए। चरण चार, बोतल में एक छिद्र कीजिए और चित्र में समझाए अनुसार स्ट्रॉ डालिए। क्रियात्मक प्रारूप एक, स्ट्रॉ के खुले सिरे से बैलून में हवा भरिए और फिर अपने अंगूठे से स्ट्रॉ को दबा दीजिए। इसे एक समतल सतह पर रखिए। क्रियात्मक प्रारूप दो, अपनी उंगली हटाइए। आपकी बैलून कार चलने के लिए तैयार है। चित्र 3.8, एयर बैलून कार बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें एयर बैलून कार बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 70। एक, अपने द्वारा बनाए गए खिलौने की तस्वीर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए।
यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप अपने द्वारा बनाए गए खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। दो, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि 5, खिलौने बनाने हेतु एक से अधिक सरल मशीनों का उपयोग। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें कई पंख होते हैं जो हवा चलने पर घूमते हैं। एक वास्तविक पवन चक्की कई भागों से मिलकर बनी होती है, लेकिन पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप इन मशीनों को एक साथ काम करने के लिए अन्य भागों के साथ साथ नोदक, प्रोपेलर और पहिया और धुरी जैसी सरल मशीनों के संयोजन का उपयोग कर बनाया जा सकता है। चित्र 3.9 में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर पवन चक्की बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 71। पवन चक्की। सामग्री: आपको कार्डबोर्ड के टुकड़े, चार्ट पेपर, स्ट्रॉ, गोंद और एक कटर की आवश्यकता होगी। चरण 1, चित्र में समझाए अनुसार एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाइए। बॉक्स के सिरों के मध्य में छिद्र कीजिए और स्ट्रॉ को इन छिद्रों के माध्यम से डालिए। साथ ही एक गोल कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी स्ट्रॉ के अंदर से आर पार कीजिए। चरण 2, स्ट्रॉ के दूसरे सिरे पर समान आकार का एक और गोल कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाइए। बॉक्स के बाहर कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर स्ट्रॉ का एक छोटा टुकड़ा चिपकाएं। चरण 3, चित्र में समझाए अनुसार चरण 2 को दूसरी ओर भी दोहराएं, लेकिन अब आपको स्ट्रॉ के सिरों पर गोलाकार कार्डबोर्ड के टुकड़े रखना होगा। चरण 4, समझाए अनुसार चार्ट पेपर से एक बेलना आकार बनाइए, स्ट्रॉ का एक छोटा टुकड़ा, कार्डबोर्ड के गोलाकार टुकड़े और चार्ट पेपर से कटी हुई पंखियों से एक पंखा बनाइए। चरण 5, चित्र में समझाए अनुसार टुकड़ों को एकत्रित कीजिए। अब आपकी क्रियात्मक पवन चक्की तैयार है। चित्र 3.9, पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 72। 1, पवन चक्की का एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे गए स्थान पर खिलौने की तस्वीर भी चिपका सकते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। 2, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार पवन चक्की के क्रियात्मक प्रारूप का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। नए विचारों के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करना। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैट बॉट है जो एक कुशल बुद्धिमान सहायक है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करता है। रोचक वस्तुएं बनाने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करने पर नए विचार के लिए चैट जीपीटी से पूछिए। आप इसके द्वारा प्रदत्त परिणाम देखकर अचंभित हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 73। गतिविधि 6, साइकिल में उपयोग होने वाली सरल मशीनें। अब तक आपने सरल मशीनों के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। अब आप ये जानेंगे कि बड़ी मशीन बनाने के लिए सरल मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। एक साइकिल विभिन्न सरल मशीनों का उपयोग करके बनाई जाती है, जैसे पहिया, पहिए और धुरी, लीवर एवं घिरनी। चित्र 3.10 का अध्ययन कीजिए। इस गतिविधि में आप सीखेंगे कि साइकिल के भागों को कैसे क्रियात्मक रूप में बनाए रखेंगे। साइकिलों में कई चलित भाग होते हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तालिका 3.2, साइकिल के सभी भाग, पहिए, गियर, पैडल आपके प्रयास को गति में बदलने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ
साइकिल का एक चित्र दिया गया है। उत्तोलक, लीवर, पहिया, व्हील, दांत।

स्प्रॉकेट, पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। चित्र 3.10, साइकिल के भाग। तालिका 3.2, साइकिल के भाग और उनके कार्य। भाग, कार्य। ब्रेक पैड, इन्हें पहियों के चारों ओर रखा जाता है और ये पहियों पर पकड़ बना लेते हैं ताकि उनकी गति को रोका जा सके। ब्रेक, ये साइकिल को धीमा करते हैं या रोकते हैं। ब्रेक के प्रकारों में रिम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक प्रचलित हैं। चेन, ये ऊर्जा को पिछले पहिए में स्थानांतरित करती है। पृष्ठ संख्या 74, चेन रिंग्स स्प्रोकेट, ये चेन का मार्गदर्शन करते हैं और पैडल से चेन तक ऊर्जा संचारित करते हैं। फ्रेम, ये मुख्य संरचना है जो चालक को सहारा देती है और सभी भागों को जोड़ती है। हैंडल बार, ये साइकिल को पकड़ने और चलाने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। हब्स, ये पहिए का मध्य भाग है, ये पहिए को धुरी के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। किक स्टैंड, ये साइकिल को सीधा खड़ा होने में सक्षम बनाता है। साइकिल लाइट, ये दृश्य क्षमता और सुरक्षा मानकों को सुगम करती है। पैडल, ये चालक के पैरों पर बल लगाने के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। रिम, ये टायर को सहारा देते हैं एवं ब्रेक लगाने के लिए सतह प्रदान करते हैं। सैडल, इस पर चालक बैठता है। सीट पोस्ट, ये सैडल को फ्रेम से जोड़ता है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है। स्पोक्स, ये रिम को हब से जोड़ते हैं और मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं। टायर, ये कर्षण और कुशनिंग प्रदान करते हैं। साइकिल से संबंधित कुछ सामान्य समस्याएं और समाधान इस प्रकार हैं। एक, साइकिल के भागों में जंग लगना। आप साइकिल के भागों को रेगमाल, सैंडपेपर से साफ कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार तेल या पेंट लगा सकते हैं। दो, ढीले हिस्से। आप उचित उपकरणों का उपयोग कर ढीले भागों को कस सकते हैं। अपने शिक्षक से इन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में पूछिए और उन्हें नीचे उल्लेखित कीजिए। खाली स्थान। तीन, पहिए स्वतंत्र रूप से नहीं घूम रहे हों। चलने वाले भागों पर तेल लगाने से सहायता मिलेगी। पृष्ठ संख्या 75। चार, सपाट टायर। टायरों में हवा के दबाव को नियमित रूप से जांचना चाहिए। आइए अब साइकिल के प्रत्येक भाग का सूक्ष्मता से अध्ययन करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, साइकिल विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों से बनी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुचारू रूप से चलती रहे, आपको इसके भागों की जांच और रखरखाव की आवश्यकता है। चित्र 3.11। यदि आवश्यक हो तो आप साइकिल मरम्मत वाली दुकान के विशेषज्ञों से सहायता ले सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक की सहायता से। तालिका 3.3 भरिए। चित्र 3.11, साइकिल को क्रियात्मक स्थिति में बनाए रखने के लिए कार्य आयोजन करना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक अपनी माँ की सहायता से साइकिल का रखरखाव कर रहा है। तालिका 3.3, साइकिल के भागों की मरम्मत। साइकिल के भाग, साइकिल के भाग का कार्य। क्या साइकिल के भाग ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं। क्या आपने उस भाग की मरम्मत के लिए कुछ किया? हाँ, नहीं। ब्रेक, खाली स्थान। चेन, खाली स्थान। स्पोक्स, खाली स्थान। किक स्टैंड, खाली स्थान। हैंडल बार, खाली स्थान। टायर, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 76। गतिविधि 7, साइकिल मरम्मत की दुकान पर जाएं। आपको विशेषज्ञों से सीखने के लिए
एक साइकिल मरम्मत की दुकान पर जाना चाहिए। आप साइकिल के रखरखाव और उसमें सुधार के विषय में सब कुछ सीखने के लिए अपने शिक्षक से साइकिल मैकेनिक मिस्त्री को विद्यालय में आमंत्रित करने का भी अनुरोध कर सकते हैं। कुछ प्रश्न जो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं वे हैं, एक, क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसकी साइकिल चलने से पहले नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए, खाली स्थान। दो, क्या सैडल की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, खाली स्थान। तीन, साइकिल साफ करने का सबसे उचित तरीका क्या है, खाली स्थान। चार, आप कैसे पहचानेंगे कि टायरों में हवा भरने की आवश्यकता है। पांच, पंक्चर कि टायरों में हवा भरने की आवश्यकता है। पांच, पंक्चर टायर को कैसे ठीक किया जाता है, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 77। छह, साइकिल की चेन में कितनी बार तेल डालना चाहिए। सात, साइकिल के चरमराते ब्रेक को कैसे ठीक किया जा सकता है, खाली स्थान। आठ, साइकिल के पहिए को संरेखण अलाइनमेंट में कैसे लाया जाएगा, खाली स्थान। गतिविधि आठ, खिलौने की एक प्रदर्शनी आयोजित कीजिए। विद्यालय में आपके और आपके साथियों द्वारा बनाए गए खिलौनों की प्रदर्शनी की योजना बनाना सभी विद्यार्थियों और आगंतुकों के लिए रोचक और समृद्ध अनुभव हो सकता है। प्रदर्शनी की योजना बनाने और व्यवस्थित करने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। एक, प्रदर्शनी का उद्देश्य परिभाषित कीजिए। क्या ये खिलौनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रचनात्मकता का प्रदर्शन करने या अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर खिलौने बनाने का तरीका सिखाने के लिए है। उदाहरण के लिए, प्रदर्शनी के दौरान आप खिलौने बनाने या साइकिल का सुधार कार्य करने का कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 78। दो, प्रदर्शनी के लिए एक विषय तय कीजिए, जैसे पर्यावरण अनुकूल खिलौने, ऐतिहासिक खिलौने एवं भविष्य के खिलौने। तीन, सुनिश्चित कीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए खिलौने चुने गए विषय के अनुरूप हों। चार, विद्यालय परिसर में प्रदर्शनी स्थान का चयन कीजिए। पांच, ये सुनिश्चित करते हुए प्रदर्शनी के लेआउट की योजना बनाइए कि आगंतुकों के घूमने के लिए वहां पर्याप्त स्थान हो। आकर्षक वातावरण बनाने के लिए आयोजन स्थल को विषय के अनुरूप सजाइए। छह, माता पिता, स्थानीय कलाकारों और समुदाय के सदस्यों को आमंत्रण भेजिए। सात, खिलौनों को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि वो आकर्षक लगें। सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक पर निर्माता के नाम और संक्षिप्त विवरण के साथ एक सूचक पत्र लेबल चिह्नित हों। सुनिश्चित कीजिए कि सभी खिलौनों का उपयोग करना बच्चों के लिए सुरक्षित है। आठ, आगंतुकों की सहायता करने और किसी भी समस्या का प्रबंधन करने के लिए स्वयंसेवकों वॉलंटियर को प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के लिए कहिए। नौ, ये समझने के लिए कि क्या अच्छा किया और क्या सुधार किया जा सकता है, आगंतुकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि और शिक्षकों से प्रतिपुष्टि फीडबैक एकत्रित कीजिए। दस, घटना का दस्तावेजीकरण करने के लिए चित्र और वीडियो लीजिए और मुख्य अंशों को विद्यालय के समाचार पत्र न्यूज़लेटर या वेबसाइट के माध्यम से साझा कीजिए। मैंने दूसरों से क्या सीखा। एक, किन्हीं तीन बातों के विषय में बताइए जो आपने खिलौने या क्रियात्मक प्रारूप बनाते समय अपने मित्र से सीखी हों, खाली स्थान। दो, साइकिल मैकेनिक मिस्त्री से सीखी गई किन्हीं तीन बातों का उल्लेख कीजिए, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 79। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा,
आपने विचारों को क्रियाओं में

0: परिवर्तित कर दिया है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है, प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया, इसका अनुमान लगाइए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तक में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त गतिविधियां की हैं, तो कृपया संख्या और समय जोड़िए। यहाँ एक समय रेखा दी गई है जिसमें गतिविधि और समयावधि कालांश के विवरण को अंकित करने के लिए स्थान दिया गया है। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ, अनुपयोगी वस्तुओं से बनी विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों का उपयोग करके एक श्रृंखला प्रतिक्रिया यंत्र चेन रिएक्शन मशीन बनाइए। नए विचारों के लिए आप इंटरनेट पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, सरल मशीन जमा श्रृंखला प्रतिक्रिया खिलौना चेन रिएक्शन टॉय। सोचिए और जवाब दीजिए। एक, आपको क्या करने में आनंद आया? दो, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तीन, आप क्या अलग करना चाहेंगे? चार, एक खिलौना डिजाइन कीजिए जिसका उपयोग आप किसी सहकर्मी को गणित या विज्ञान से संबंधित अवधारणा को समझने में सहायता करने के लिए कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 80। पांच, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी तय करते समय पहिया कितनी बार घूमेगा? संकेत, आप साइकिल के टायर के रिम की परिधि सरकमफेरेंस का उपयोग कर सकते हैं या साइकिल के टायर की गति का अवलोकन कर सकते हैं। 6, क्या साइकिल के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई परिवर्तन होता है? यदि हाँ तो कैसे? 7, परियोजना से संबंधित अन्य कौन से कार्य हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बातचीत कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा अभी किए गए कार्य से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण, साइकिल मैकेनिक, खिलौना निर्माता और अभियंता इंजीनियर आदि हैं। इसके साथ ही भाग 2 परियोजना 3 समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर मुइनुल हुसैन, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

ये तरकस है और तरकस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111 6666 पर संपर्क करें।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
6: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
7: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
8: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने चक्रवातों के बारे में जाना कि चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना।

0: विवेक विवेक ये सृष्टि और मानव दोनों कहाँ गए? इन दोनों काफी देर से भूख लगी का शोर मचा रहे थे
1: और अब खाना तैयार है तो इन दोनों का पता ही नहीं।
2: मम्मी शायद ये दोनों छत पर होंगे।
0: लगता है दोनों भाई बहन पतंग उड़ा रहे हैं।
1: विवेक जाओ उन्हें खाने के लिए बुला लो।
3: जल्दी जाओ भाई, मुझे भूख लगी हुई है।
4: मानव
3: तुम भी ना खाने से सृष्टि
1: मैंने थोड़ी ना भेजा
4: है। मानव तुम भी ना तैयार है, नीचे आ जाओ जल्दी।
5: अभी आ रही है।
4: लो आ रहे हैं अभी।
1: लो हम आ गए पापा।
0: अरे बच्चों जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है।
6: अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए हैं,
1: साथ में हलवा भी है मानव,
7: और नारियल की चटनी भी है।
0: बच्चों शुरू हो जाओ जल्दी से।
1: चलो
3: अरे भाई मैं तुम्हें ये पास करूँ।
1: हाँ ये लो बेटा तुम भी लो।
2: मम्मी चटनी का स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा है?
6: मुझे लगता है कि मम्मी ना नमक डालना भूल गई।
0: हाँ बच्चों, नमक नहीं होने के कारण ही सचमुच खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है।
1: मम्मी क्या नमक खत्म हो गया है?
2: सृष्टि हुआ नहीं तो जल्दी हो जाएगा। हा? तुम्हें पता ही होगा अपना मानव थाली में हमेशा अलग से नमक जरूर लेता है
1: और हमेशा फिर थाली में छोड़ भी देता है। हाँ घर में सबसे ज्यादा नमक मानव ही व्यर्थ करता है।
6: अरे भाई नमक जैसी सस्ती चीज के लिए आप मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो? पापा की सैलरी का सबसे कम हिस्सा इस नमक पर ही तो खर्च होता है।
1: अरे नमक के लिए तुम लोग मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान करते हो?
2: मम्मी ये नमक ही तो था जिसने 1930 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस नमक में बड़ी ताकत है।
6: वो कैसे भैया?
2: मानव सन 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था।
1: भैया एक बात बताओ, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने अपने आंदोलन के लिए नमक जैसी साधारण चीज क्यों चुनी?
7: बच्चों क्योंकि नमक का उपयोग हम सभी करते हैं और ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बना रखा था कि नमक का व्यापार केवल सरकार करेगी, यानी आम आदमी को ये हक नहीं था कि वो नमक बना सके।
1: यानी नमक की सबको कीमत चुकानी पड़ती होगी और वो भी वो कीमत जो सरकार चाहे।
6: तब तो सबकी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा नमक खरीदने में ही जाता होगा।
0: और सिर्फ यही नहीं, नमक का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर आजादी की लड़ाई में जन जन को जोड़ा जा सकता था।
6: पापा तो क्या गांधी जी इसमें सफल हुए?
7: बेटा सफल क्यों नहीं हुए, नमक के आंदोलन के बाद तो आजादी की लड़ाई ने जैसे आग पकड़ ली
1: और वो आग 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही बुझी। क्यों पापा ठीक कहा ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। पर बच्चों नमक का दांडी यात्रा से ही नहीं बल्कि सैलरी शब्द से भी गहरा संबंध है।
6: पापा भला सैलरी शब्द का नमक से क्या लेना देना?
0: मानव सैलरी शब्द की उत्पत्ति ही लैटिन शब्द सेलेनियम से हुई है, इसका अर्थ नमक के रूप में भुगतान होता है। और बेटा और तो और रोम में तनख्वाह या पगार के रूप में नमक दिया जाता था।
6: अच्छा?
0: इसीलिए इसे सैलरी बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द सॉल्ट इसी शब्द से निकला है।
6: अच्छा इसका मतलब सर्विस यानी नौकरी करने वालों के लिए तो नमक का विशेष महत्व है।
1: सर्विस क्लास ही क्यों, अमीर हो या गरीब नमक तो सभी के लिए आवश्यक है।
0: बिल्कुल
1: मम्मी बातें तो चलती रहेंगी लेकिन बिना नमक के चटनी नहीं खाई जाएगी।
7: लो बच्चों खाने के ऊपर से थोड़ा नमक डालो।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: लो मुझे भी देना।
1: ये लो भैया
6: ये ले।
2: हाँ मम्मी
3: अच्छा लग रहा है।
6: अब अच्छा है।
2: नमक डालने से तो चटनी में स्वाद आ गया।
6: लेकिन भैया ये नमक इतना सस्ता क्यों है?
1: मानव तेरा विचार क्या नमक को महंगा बनाने का है?
6: अरे नहीं दीदी मेरा मतलब है कि इतना नमक आता कहाँ से है?
1: अरे बुद्धू इतना भी नहीं पता तुझे, नमक समुद्री जल से बनता है।
2: मानव इतना तो पता होना चाहिए था तुझे, समुद्र ही नमक का सबसे बड़ा स्रोत है।
6: पर पुराने समय में जहाँ लोग समुद्र के पास नहीं रहते थे उन लोगों को नमक कहाँ से मिलता था?
1: उन्हें नमक खरीदना पड़ता था वो भी मुंह मांगी कीमत पर।
6: तब तो उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नमक पर ही खर्च करना पड़ता होगा।
1: अरे पापा ने अभी बताया तो रोम में तो वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में ही दिया जाता था।
0: बच्चों नमकीन बातें बहुत हुई, अब हलवा खाओ। हलवा हमें भी खिलाओ भाई।
1: स्वाद में देखो ज्यादा ना हो जाए। मम्मा
2: लो ना।

0: पापा आप
1: सोचते सोचते खाए चले जा रहे हो।
2: अरे पापा आज हमें घूमने भी तो जाना है ना।
0: अरे जाएंगे सही, पहले हलवा तो खा ले हम। अरे तब तक तुम लोग ये तो तय करो कि जाना कहाँ है।
3: पापा समुद्र के नमक से मुझे याद आया, क्यों ना हम समुद्र का खजाना नामक प्रदर्शनी देखने चले।
4: भैया कहीं तुम महासागर विकास विभाग की चलती फिरती प्रदर्शनी की बात तो नहीं कर रहे।
3: उसी की तो बात कर रहा हूँ सृष्टि, इन दिनों ये प्रदर्शनी हमारे शहर में आई हुई है।
2: वाह पापा, तो आज चलते हैं समुद्र का खजाना देखने के लिए।
0: हाँ जरूर चलेंगे बच्चों जरूर, बस मैं ये हलवा खा लूँ, फिर थोड़ी सी एक प्यारी सी छोटी सी नींद ले लूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है
4: यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: समुद्र का खजाना देखने लोग भी तो बड़ी संख्या में आए हैं।
4: यहाँ तो चार गैलरीज हैं। पहले किस में चले?
2: मम्मी पहले हम चलते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र के संसाधनों की जानकारी लेने, ठीक है?
0: हाँ भाई, तट से होते हुए ही गहरे समुद्र में जाएंगे।
2: अरे देखो यहाँ तो नदी मुख, समुद्री झील, बालू के टीले और कच्छ यानी मैंग्रोव वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
5: मानव समुद्र तटीय क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत और बालू प्राप्त होती है और यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं जैसे थोरियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह।
4: रेत और बालू तो सही, पर मैंग्रोव वनस्पति?
3: मैं बताता हूँ मम्मी, प्रकृति ने इन वनस्पतियों को खारे पानी में उगने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है।
4: खारे पानी में उगने के अलावा मैंग्रोव के बीज में पेड़ पर ही अंकुरित होने का गुण भी पाया जाता है।
5: बच्चों प्रकृति की अनोखी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं।
4: आगे देखते हैं और क्या क्या है समुद्र में।
0: आइए चलो।
2: भैया यहाँ ये सुनामी का चित्र क्यों दिया गया है?
3: मानव इतना भी नहीं पता कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी या समुद्री लहरों और चक्रवात के प्रभाव को कम कर देती हैं। तटीय क्षेत्रों के लिए ये वनस्पतियाँ प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं।
2: तो इसका मतलब मैंग्रोव सुनामी के तट पर पहुंचने से पहले ही उसके वेग को कम कर देती है।
4: हाँ मानव, मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी जैसी आपदा से बचाने के साथ और भी अनेक कामों में उपयोगी हैं, जैसे ये जलाने के लिए और फर्नीचर निर्माण में भी उपयोगी हैं।
3: और मैंग्रोव वनों में अनेक वन्य जीव जंतु और पक्षी भी रहते हैं।
5: बच्चों भारत के सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र में बाघों की अच्छी खासी संख्या है।
4: इन वनों से तो दूर ही रहना मानव।
2: क्यों?
4: नहीं तो पता चले कि बहादुर मानव बाघ के सामने आने पर भीगी बिल्ली बन गया।
6: ये देखो यहाँ समुद्री पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया चित्रों के माध्यम से बताई गई है। और ये देखो पहले समुद्री जल के वाष्पन से इसके रवे या डल्ले बनते हैं।
2: अरे वाह ये तो नमक के खेत लग रहे हैं और ये नमक जैसे मिश्री की डली हो।
4: लेकिन ये मिश्री नहीं नमक है।
3: और मानव इन्हीं रवों को पीस कर तो नमक बनाया जाता है।
5: बच्चों आजकल नमक बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में इन रवों को साफ करके तथा पीस कर बनाया जाता है।
6: नमक बनाने के साथ ही अब तो अधिकतर पैकिंग के दौरान ही इसमें आयोडीन भी मिला दिया जाता है।
2: आयोडीन?
4: मानव आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। समुद्र की वनस्पतियाँ भी आयोडीन का एक मुख्य स्रोत है।
0: बच्चों आगे चलो, अभी बहुत कुछ देखना है।
3: यहाँ तो समुद्र की लवणता के बारे में बताया गया
4: है। मुझे पता है कि समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति लीटर होती है।
5: वेरी गुड। अब बच्चों सागर की लवणता में अकेले सोडियम क्लोराइड यानी नमक का योगदान ही करीब 80% है।
3: और जानते हो मानव, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्र के पानी में कई और भी लवण होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।
4: पापा अब समुद्र के सजीव संसाधनों की प्रदर्शनी देख लेते हैं।
2: अरे वाह ये देखो ये रंग बिरंगी मछलियों के चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं।
6: बेटा समुद्र में मछलियों का संसार इन चित्रों से भी अधिक सुंदर है।
2: इनसे भी सुंदर है?
3: हाँ मानव, समुद्र में तो मछलियों की हजारों प्रजातियाँ रहती हैं।
5: और बच्चों पता है ना, मछलियाँ प्रोटीन का भंडार होती हैं। पूरे संसार में अधिकतर लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता समुद्री जीवों से ही पूरी होती है।
4: अच्छा ये बताओ मानव, धरती का विशालकाय जीव कौन सा है?
2: ब्लू व्हेल।
4: अरे वाह, तुझे तो पता है।
3: अरे सृष्टि, सामने व्हेल के बारे में जो जानकारी दी गई है, मानव ने उससे पढ़कर उत्तर दिया है तुम्हें।
4: तभी तो मैं कहूँ हमारा बुद्धूराम समझदार कैसे हो गया।
2: अच्छा
4: पापा, मैंने क्या किया?
3: पापा आगे चलते हैं, अभी तो देखना है कि क्या क्या बाकी है समुद्र के खजाने में।
0: चलो
6: बेटा, समुद्र को धरती का भंडार गृह भी कहते हैं। यहाँ वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समाई हुई है, जो सभी समुद्री पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है।
2: अरे ये समुद्र में जंगल कहाँ से आया?
4: मानव, ये जंगल नहीं, समुद्री जीव पोलिप या मूंगे की चट्टाने हैं।
5: इन्हें कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है।
6: बच्चों, ये प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
3: मानव जानते हो, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में विभिन्न रंगों वाले मूंगे, सीपी और शंख तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में जैव विविधता भी पर्याप्त होती है। उत्पादन क्षमता के आधार पर इनकी तुलना जमीन के वर्षा वनों से की जाती है।
5: हाँ बच्चों, केकड़े, मोलस्क, स्पंज और बहुत सुंदर सी मछलियों सहित प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में लाखों समुद्री जीव जंतु निवास करते हैं।
6: और इस क्षेत्र से अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व भी मिलते हैं।
2: आज मुझे समझ में आया कि जमीन से अधिक जीव तो समुद्र में बसे हैं।
3: बिल्कुल ठीक समझे मानव तुम, समुद्र असंख्य जीवों का घर है। और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था।
5: और बच्चों, समुद्री क्षेत्र में मछली उद्योग, झींगा उद्योग और केकड़ा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार और भोजन भी मिल रहा है।
2: पापा, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमको भी कुछ खा लेना चाहिए?
6: अरे हाँ, बच्चों को भूख लगाई होगी, अब क्यों ना हम बाहर ही कुछ खाएं?
5: हाँ। वसुधा तुम भी।
4: लगता है मानव समुद्र का खजाना देखने नहीं बल्कि बाहर खाना खाने के लालच में आया है।
5: मानव, खाने के बाद अब हम प्रदर्शनी में समुद्र के निर्जीव खजाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो
2: चलो चलो चलते हैं।
4: अरे वाह, इस चित्र में तो समुद्र में कहीं पहाड़ तो कहीं गहरी खाई दिखाई गई है।
2: समुद्र में पहाड़?
3: हाँ मानव, समुद्र भी धरती की तरह ऊंचा नीचा है।
5: और समुद्र की औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है।
6: और तुम्हें पता है बच्चों, समुद्र की इस गहराई में अनेक धात्विक खजाने दबे हुए हैं।
2: कौन से धात्विक खजाने दबे हुए हैं?
4: मानव, मम्मी का मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बहुधात्विक पिंडिका से है।
3: यहाँ बहुधात्विक पिंडिका के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
5: लिखा है कि भारत को इस दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मध्य हिंद महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला है। वर्ष 2002 तक भारत ने 2500 से अधिक स्थानों से 250 टन से भी अधिक बहुधात्विक पिंडिकाएं इकट्ठी की हैं, जिनसे हमें कई बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं।
3: और आगे बढ़ो मानव, भारत के संरक्षित समुद्री क्षेत्र से प्राप्त पिंडिकाओं में तांबा, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज के करीबन 6.5 मिलियन टन अनुमानित भंडार जमा है।
2: दीदी, समुद्र के इस खजाने में सोना चांदी नहीं है क्या?
4: मानव, समुद्र के पानी में सोने और चांदी के अलावा ब्रोमीन, लोहा, कैल्शियम और सल्फेट जैसे अनेक तत्व घुले हैं।
2: इसका मतलब समुद्र से नमक ही नहीं, कीमती धातुएं भी मिलती हैं।
3: और समुद्र से हमें मोती भी तो मिलते हैं।
2: तब तो इस चित्र प्रदर्शनी को नाम सही दिया गया है, समुद्र का खजाना।
4: तो पापा, अभी और क्या क्या है समुद्र के खजाने में?
5: अरे बेटा, समुद्र के भंडार में हाइड्रोकार्बन स्रोत भी महत्वपूर्ण है।
3: काला सोना कहलाने वाला पेट्रोलियम भी तो समुद्र से ही निकाला जाता है।
2: लेकिन समुद्र में पेट्रोल कहाँ से आता है?
6: मानव, देखो इस चित्र में छोटे समुद्री जीवों और वनस्पतियों को सागर तल में जमा होते दिखाया गया है।
3: और फिर उच्च दाब और ताप से ये जीव हजारों वर्षों में हाइड्रोकार्बन पदार्थ में बदल जाते हैं,
4: जिनसे हमें प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोम और वैसलीन और न जाने क्या क्या मिलता है।
2: अरे वाह, समुद्र से इतने सारे हाइड्रोकार्बन पदार्थ निकलते हैं।
4: मानव समुद्र को धरती का भंडार गृह ऐसे ही थोड़ा कहा गया है, यहाँ तो असीम प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई है।
0: आधी प्रदर्शनी तो देख ली बच्चों, अब क्या विचार है?
3: पापा कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमकर आते हैं?
2: नहीं नहीं, घूमेंगे नहीं, पार्क में बैठेंगे। पर पहले आइए, सभी का स्वागत है प्रदर्शनी के समुद्री ऊर्जा संसाधन वाले इस हिस्से में।
4: मानव क्या पिछले जन्म में गाइड थे?
2: फिर से
0: बच्चों यहाँ देखो, यहाँ अच्छी जानकारी दी है। लिखा है भारत के पास 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें उपस्थित सभी संसाधनों का दोहन किया जा सकता है।
4: पापा ज्वारीय ऊर्जा भी तो समुद्र के खजाने का एक मोती है।
0: हाँ बच्चों, विश्व के अनेक देशों में समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है।
2: तो क्या भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है?
0: हाँ?
4: भारत की अनुमानित ज्वारीय ऊर्जा क्षमता करीब 8000 से 9000 मेगावाट है।
6: और बच्चों इस चित्र में तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा को दर्शाया गया है। देखो
2: ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से ही संबंधित है ना दीदी?
4: हाँ मानव, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र के तटीय जल में निश्चित समय में उतार चढ़ाव होते हैं,
6: और इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। और बच्चों यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे ज्वार भाटा की घटना से समुद्री जल के उतार चढ़ाव से टरबाइन को घुमाकर विद्युत पैदा की जाती है।
0: देख रहे हो ना बेटा, भारत में भी सुंदरवन क्षेत्र में करीब 3.5 मेगावाट के ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना बन रही है।
3: बहुत अच्छी बात है पापा। अब आगे चलें, आगे देखते हैं सागर में और क्या क्या ऊर्जा स्रोत छुपे हैं।
0: अरे ये देखो बच्चों, समुद्री जलतापी ऊर्जा जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी कहा जाता है, ये देखो दिखाया।
3: मानव इस सिलसिले में सबसे पहला विचार किसका था?
2: मेरा तो नहीं था।
3: मैं बताता हूँ, इस तरह ऊर्जा प्राप्त करने के विचार को सर्वप्रथम 1881 में एक फ्रेंच इंजीनियर ने रखा था।
6: इसमें ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत समुद्री जल की विभिन्न परतों के तापमान के अंतर में छिपा है।
2: ये तो मैं भी जानता हूँ कि सूर्य की किरणों से समुद्री जल की ऊपरी परत अधिक गर्म हो जाती है।
4: हाँ मानव, समुद्री सतह के नीचे जल का ताप कम होता जाता है।
0: और इसी सिद्धांत पर 1970 में जापान के हवाई द्वीप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई।
3: लेकिन इस विधि में ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्री जल में न्यूनतम तापमान अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
2: लगता है भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।
6: हाँ मानव, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति पर ये अक्षय स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: बिल्कुल।
4: अरे अभी समुद्र के ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं हुए, आगे भी तो है। चलो चलो देखते हैं।
0: अरे वाह, देखो मानव यहाँ देखो, यहाँ समुद्री धाराओं और तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से भी विद्युत निर्माण की जानकारी दी गई है।
3: समुद्री जल की लवणता में भिन्नता से भी ऊर्जा उत्पादन के बारे में अब इस चित्र में बताया गया है। देखो मानव।
2: हाँ, और हमारी टीचर ने भी बताया था कि विश्व के सभी समुद्रों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
6: वाह शाबाश बेटा, तू जरूर हमारा नाम रोशन करेगा एक दिन।
4: रोशनी करेगा मम्मी, पर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर।
0: अरे बेटा तू बहुत तंग कर दी।
6: लगता है हम प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में हैं।
0: तुमने सांस तो बहुत लंबी ली, ऐसा लगता है थक गई हो तुम वसुधा। देखो यहाँ चित्रों में गैस हाइड्रेट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हाइड्रेट की खोज महान वैज्ञानिक हम्पी डेवी ने सन 1811 में की।
3: वैसे प्रकृति में हाइड्रेट तो अनेक रूपों में मिलते हैं, लेकिन समुद्री तलछटों में पाए जाने वाले मीथेन हाइड्रेट भविष्य में ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।
6: और यहाँ लिखा है कि समुद्र में हाइड्रेट की अनुमानित मात्रा कुल जीवाश्म ईंधन की मात्रा से दुगनी है और इनकी खोज सर्वप्रथम 1980 में की गई थी। आने वाले समय के लिए हाइड्रेट क्षेत्रों को ऊर्जा भंडार के रूप में देखा जा रहा है।
2: भैया, अभी तक कितने गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है?
3: मानव, अभी तक विश्व में 77 गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।
5: और देखो यहाँ इस लेख में समुद्र में इन स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है।
3: देखो यहाँ वेधन या ड्रिलिंग और पनडुब्बियों की जानकारी दी गई है जो समुद्री खजानों यानी समुद्र के संसाधनों की खोज और शोध करते हैं।
4: भैया, भारत की सागर कन्या यान भी तो ऐसा ही काम कर रही है।
3: हाँ सृष्टि, बिल्कुल ठीक। सागर कन्या समुद्री क्षेत्र में खोज व अन्वेषण का काम भी करती है। ये समुद्र विज्ञान से संबंधित चलती फिरती प्रयोगशाला है।
5: भाई अब तो शाम हो गई, अब घर चलें।
4: चलते हैं।
2: मम्मी, आज हमने सागर के खजाने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। मुझे तो लगता था कि समुद्र से केवल नमक ही मिलता है।
3: शुक्र है तुम्हें इतना तो पता था।
4: बाहर तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ कितना मजा आ रहा है।
3: और ये वर्षा भी तो समुद्र के कारण ही मिलती है।
5: हाँ बच्चों, जब सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तब बादल बनते हैं।
3: और ये बादल हवा के बहाव के साथ विभिन्न स्थानों पर वर्षा करते हैं।
2: और हवाएं भी कितनी तरह की होती है ना, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएं, जेट स्ट्रीम आदि।
3: मानव, जेट हवाएं वायुयानों को उड़ने में मददगार हैं और व्यापारिक हवाएं समुद्र में पानी के जहाजों को गति करने में सहायक होती हैं।
2: भैया, हवाओं के चलने से हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान भी तो आते हैं ना।
6: मानव, हवाएं केवल तूफान ही पैदा नहीं करती, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है।
2: बिजली, और वो भी हवाओं से? ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है।
3: सच में पढ़ा है तुमने?
2: जी हाँ, पढ़ा है।
3: अच्छा। मानव, हाल ही के दिनों में पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनकर उभर रही है। इसमें हवा की शक्ति से टर्बाइनों को घुमाकर बिजली बनाई जाती है।
6: वैसे भी मानव बेटा, वायुमंडल और समुद्र तो हमारी धरती पर जीवन की निशानी है।
3: धरती का मौसम भी तो वायुमंडल और समुद्री प्रक्रियाओं पर काफी हद तक निर्भर होता है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की देन हुआ ना।
5: हाँ। और बच्चों, आजकल कई देशों में मौसम पूर्वानुमान तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय बन रहा है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की ही देन है।
6: अरे अरे बच्चों, तुमने बारिश की बात की थी ना, देखो तो अब बिन मौसम ही बरसात होने लगी है।
2: बारिश।
4: मानव, तू सुबह से नहाया नहीं ना, इसीलिए तुझे नहलाने के लिए बारिश हो रही है। चलो
2: लेकिन मम्मी, मेरी थाली में नमक मत रखना।
4: हाँ? क्या हुआ मानव, पहले तुम थाली में चम्मच भरकर नमक रखने को कहते थे
3: और उसे वैसे ही छोड़ देते थे।
5: अरे बेटा, आज कहीं तुमने किसी से ये तो नहीं सुन लिया कि जितना नमक बर्बाद करोगे अगले जन्म में उतना ही आँखों की पलकों से उठाना पड़ेगा।
6: है? नहीं जी, मेरा बेटा ऐसी रूढ़ियों को थोड़ा ही मानता है।
5: तो फिर अच्छा नहीं मानता
4: तो फिर क्या बात है, आज मानव नमक की कद्र कैसे करने लग गया?
6: जरूर इस बात का संबंध समुद्र के खजाने वाली प्रदर्शनी से है।
5: ओ, क्यों मानव, क्या यह बात सही है?
2: हाँ पापा, आज प्रदर्शनी देखकर मुझे समझ आ गया कि प्रत्येक तत्व, चाहे वो नमक हो या हीरे मोती, प्रकृति में सभी की अहमियत है। इसीलिए हमें पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ही करना चाहिए, क्योंकि इनके उचित उपयोग में ही हम सबकी भलाई है।
5: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हमारा मानव तो प्रकृति के संसाधनों के उचित उपयोग की बात समझ गया। अब जल्द ही सभी मानव इस बात को समझ जाएं तो पृथ्वी पर जीवन सदा मुस्कुराता रहेगा।
3: क्या बात है, क्या
2: पर बात पापा है? मैं तो तभी मुस्कुराऊंगा जब मैं खाना खाऊंगा, तो शुरू करें।
1: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी सुन रहे थे, समुद्र का खजाना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Bingo और मलेरिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह,

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना पलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ

0: जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।
1: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरे प्यारे दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
3: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें। सुनो शारदा
4: 90.8 FM। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से

0: नहीं, चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में, पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दोनों को ही चाहतों ने चाहतों से मारा, इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए,

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी ही आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आँखें। सुनो शारदा 90.8
3: FM। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा। आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: गच लागे म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
1: Get ready।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। ऐसी आजादी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय कर हासिल की। 26 जुलाई 1999 की कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस उन वीर जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और वीरता को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर जवानों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।